के कौन निरंग दिया कलंग के सारे लोरनियन काटे ककने समारोह के चुमास्ती रमुआ तू